0: गावे को तान हुवे के सेतान, गावे को दात जाने निशान,
1: गावे को गुण वडियाया चार, गावे को विद्या विखम विचार,
0: गावे को साज करे तनखे, गावे को जी ले फिर देहे,
1: गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरह दूर,
0: कथना कथी ने आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट,
1: दीदा दिले दी थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाही,
0: हुक्मे हुक्म चलाहे राहो, नानक बिगते बे

0: गावे खंड मंडप भंडा कर कर रखे तारे।
1: से तुद नो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले।
0: कोई केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे।
1: सुई सुई सदा सच साहेब साचा।

0: प्रभादे अंगंजया गादे सोभन सर्वभाग्य सर्वानुरागे वंग सदा भोक्स रूप प्रजोक्त अनूप है
1: सदा है विपुत परवाह है।

0: अर्जुन के हाजर जूरे में सुसलाम है समस्त कलाम है।
1: के
0: राज करें करीमल कुमाल है कुशल जमाल
1: है। गरीब निवाज है हरीफ शिकान है रासल फिकान है।
0: वृणाश समस्त निवास मंजन गनीमर जाय करीम
1: है। सर्वान
0: में सर्वान तमाम तमीज समस्त अजीज
1: है। समस्त
0: अजीज है मैं करीमल कुमाल है की जरूरत जमाल
1: है। प्रकाश है के मितो सुभाष है के आज वो स्वरूप है के मितो विभूत है।
0: आत्म प्रभा के चल अंग नांग के मितो अपहंग
1: है। मन पासन प्रसाद
0: मन प्रणाम गुण गुण मंदा मर गांजा हर नर पर भंज।

0: माथे परमाथे अजो नियमो
1: नरागिन रंगिन रूपिन रेखे
0: अकर्मन परमन गंजे लेखे पुचांग प्रिया निशान
1: समस्त प्रणामे समस्त प्रणासे गंजल नामे समस्त निवासे
0: निगान बपूते समस्त स्वरूपे कुकर्मन प्रणासी सुतर्मन बपूते
1: सदा सचिदानंद स्तरंग प्रणासी करिमुल।

0: केवल दाता सुख मन बसाए
1: अनुग्र तैसी बाहर माया
0: सभी को जेही काटे खेल
1: रचाया जमिया परिवार भला पाया
0: की लगी कृष्णा माया अमर बताया
1: जितर विश्रम उपज पाऊ दूजा लाया
0: नानुग प्रसादी जिना निब लगी तिन बिचे माया
1: पाया मुल का मुल ना पाया जाए
0: किसी तो रहे लोक बिलाए
1: ऐसा सतगुरु जी मिले तिसनो सिर पिए विचों आप जाए
0: जो
1: मुल के भागत ना के नानका जन हर पल्ले पाए
0: रास मेरी मन बंजारा रास मेरी मन बंजारा सतगुरु तेरा
1: जपियो जियो।

0: राजा पवन बजाया।
1: सोहला साचा कर
0: गावहू सोहला का साचे जिथे सदा सत
1: त्यावे जत तू पावे गुरमुख जना बुझावहि
0: सबना का खासन है।

0: तन मन फिका फिको फिका सदिये फिके फिकी सोय फिका दरगे सटिये मुदुका फिके पाय फिका मूर्ख आखे पाणले सजाए महला पहला।
1: अंदरो झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल आठ सर तीर्थ जी नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदर।

वे नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेश तन माय मिटावो। सिमरो जास बिसंबर एक नाम जपता गणतन एक। वेद प्राण सिमर सुधा करो।

प्रभु सिमरत काश्य बिगन न लागै, प्रभु के सिमरन दिन जागै, प्रभु के सिमरन भाव न व्यापै, प्रभु के सिमरन दुख न संतापै, प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसे दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ शिनानी, प्रभु के सिमरन दुर्गा मनी, प्रभु के सिमरन होए सो भला, प्रभु के सिमरन सो फल फला, से सिमरज ने आप समराए नानक तक लागू पाई, प्रभु का सिमरन सब ते उच्चा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बूजा, प्रभु के सिमरन सबकी सूजा, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिदमाहे समाए, प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से तनवंती, प्रभु को सिमरे से पतवंती, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दे अल्लाह नानक जन की मंगै रवाला, प्रभु को सिमरै से परे उपकारी, प्रभु को सिमरै तन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तन सुख बिहावै, प्रभु को सिमरै तन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तन आनंद कनेरी, प्रभु को सिमरै बसे अरनेरे, संत कृपा ते अंदन जागो, नानक सिमरन पूरे पागो, प्रभु के सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु के सिमरन कबू न चूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सहज सुमानी, प्रभु के सिमरन निश्चले आसन, प्रभु के सिमरन कमल विघासन, प्रभु के सिमरन अनाथ चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार, सिमरे से जन जन को प्रभु मैया, नानक तिन जन शरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीचों कुंड जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल कारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जसा बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पा

भगजना की बर्तन नाम समझना के मन विश्राम अर के नाम दास की ओडर के नाम दृजन कोट हर जस करत संत दिन रात हर रुख साधक मात अर्जन केर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दानम मन तन रंग रते रंग कै नानक जन कै ब्रत बवेक कैर का नाम जन को मुक्त जुगतो हर के नाम जन को तृप्त भुगतो हर का नाम जन का रूप रंग नाम जुप का परे न भंग हर का नाम जन की वड़ियाई हर के नाम जन सो बाबा हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जुप कृष्णाए ब्योग जन रतर नाम की सेवा नानक पूजा हर हर देवा हर हर जन के मालख जीना हर तन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन के उठस्तानी हर प्रताप जन अवरण जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपर का भगत प्रगट नहीं छपहर की मग भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जाते वर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तमर की कथा नाम सुनत दर दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्सब नसै संत का संग बड़भागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुलका शबर न होए नानक गुरु।

जिसके अंतर बसे निरंकार तिस किसी एक तरह संसार जो तुम भन तिन प्रभ जाता नानक चरण प्रथा करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना की आपे मन आपे आप करतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत ने रा उपाव सन सब ते रहत सब की जाने आ तुम की रहत जिस पाव वेत से लै लड़ लाए तंत तंत रे असमाय सो सेव जिस कृपा करी निमक निमक जप नान करी श्लोक

सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख साय निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी के नहीं बिना आस ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता ब्रह्म ज्ञानी के अचिंत ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जुस्करे प्रभाप ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय ब्रह्म ज्ञानी को खोज।

0: ब्रह्म ज्ञान की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञान के सकल मन माए, ब्रह्म ज्ञान के कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञान के सदा देश, ब्रह्म ज्ञान के कथन जाय आकर, ब्रह्म ज्ञान के सर्व कठाकर, ब्रह्म ज्ञान की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान जाने, ब्रह्म ज्ञान के अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञान के सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ के अनाथ, ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी।
1: श्लोक उतार जो अंतर्नाम सर्वमति के भगवान नमुख नमुख ठाकुर नमस्कार नानक प्रसंग निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रचना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परते रूप न पेखे नेत्र सब रसन संहेत करना सुने काम की निंदा सब तेजाने आप को मंदा गुरु प्रसाद विखे पर हरे मन की वासना मन ते टरे इंद्रिय जित पाई दो ते रहत नानक कोण मद को वैसा परस वैसनो सोई सुपर सो प्रसन्न विष्णु कुमार तो भिन्न कर्म कर तो ने कर्म दिस वैसनो कर निर्मल धर्म का फल की इच्छा नहीं बच केवल भक्त कीर्तन संग्राच मंत्र अंतर सिमरण गोपाल सब ऊपर हो कृपाल आप दृढ़ नाम जपावे नानको वैसनो परम गुद पावे भगवती भगवंत बोध कर अंग सगल त्यागे दुष्का संग मानते बिनस सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सासु पाप अमल खोवे तिस भगवती की मत तुम होवे भगवंत की डाल करन तनीत मन ते निर्भय विष्णु करी हर के चरण हृदय वसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सुख नजो मन प्रबोधे राम नाम आत्म सोदे राम नाम सारस भी उस पंडित के दे जग दीवे हर की कत हृदय वसावे सो पुण फिर जो वेद प्राण समर्थ पूजे मूल सुख मै जाने सोल चौ वर्णा को देव देश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सब को ज्ञान चौ वर्णा में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी कतोय सासंग पावे जिनको कर कृपा अंतर तारे पास परे मुक्त पात्र को तारे सर्वलोका उकुद नाम कल्याण मंगल गुण गाम काहू जुगत के न पाई धर्म नानक तिस मिले जिस लिखे तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास इसका नाम सतराम दास आत्म राम तृष्ण त्रिया दाद संदन पाचन पाय सदा निक निग्रह जान सो दास दुर्गी प्रवाण अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सासो जी भरे सगल संग आत्म दास ऐसे युक्त नानक राम दास प्रभु के आग आत्म तावे जीव मोक शोक हावे तैसा तैसा शोक सदानंद नहीं व्योग तैसा स्वर्ण तस माटी तस अमृत तस विकाटी तस मान तस मान तस रंग तस राजान जो वरता है सही युक्त नानक को पुर कहिए जीवन मुक्त है पार ब्रह्म के सगल हेठा हो जिस जित का रखे त सती ना वापे करण करावण जोग प्रभावे सोई फुण होग पसर वाभिन तरंग लखन जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मादे दस प्रकाश पार ब्रह्म करता विनाश है सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर ने नानक भय निहाल सलोक उसद करे अनेक जन तना पारावार नानक रचना प्रभ रचे बहुविध अनुक प्रकार कई कोड़े पुजारी कई कोड़ाचार बिहारी कई कोड़ पै तीर्थवासी कई कोड़पण परमेवदासी कई कोड़ वेद के स्रोते कई कोड़ दिसर होते कई कोड़ आत्म ध्यान तार कई कोड़ कव का विचार कई कोड़ नव तन नाम त्यावे नानक करते गंत न पावे कई कोड़ पय मानी कई कोड़ अंध ज्ञानी कई कोड़ कृपण कठोर कई कोड़ अभिगात्म निकोर कई कोड़ पर द्रव कुहिरा कई कोड़ पर दुखना कर कई कोड़ माय सुरमाय कई कोड़ परदे सुरमाय जे जित लावो तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोड़ सिजति योगी कई कोड़ राज रस भोगी कई कोड़ पंखी सुरभ पाए कई कोड़ पात्र भूषण विजाय कई कोड़ मौन पाणी बैसंतरे कई कोड़ देशो मंडले कई कोड़ सस्य सुवर्ण खेतरे कई कोड़ देवदान इंद्र सिर छात्र सगले समग्री अपने सुतार नानक जिस जिस भाव है तिस ते निस्तार कई कोट राजस्थान साधक कई कोट वेद प्राण समृत सात कई कोट कीर्तन संबंध कई कोट नानक प्रकार जन कई कोट केचर जीव कई कोट गिरी मे सुरण थी वै कई कोट जक नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकुर मृगाच ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੇ ਸਮੂਹ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕਿਆ ਅਲਪ ਤ੍ਰੈ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਦੀ ਖਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਘਲ ਥਕਮਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਕੇ ਧਨਵੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ

जिसके अंतराज महान सो नरकपति हो सोहान जो जाने में जो गुणवान तो सो सुविष्टा का जंत आप सुको जो आप सुको कर्मंत कहा वे जन्म मरे फिर जुन प्रमा धन भूमिका जुगरे कुमान सो मूर्खंदा गया कर कृपा जिसके हृदय की हृदय गरीबी उसावे नानक अमुक्ता के सुख पावे धन मनता हुए कर गर्भावे तिन सुमन का संग न जावे बोलस कर मान को ऊपर करे आस पल पितरता का विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हो जाए सुमंत किसी ने बदे आप ओंकारी धर्म राय दिस करे खुआरी गुरु प्रसाद जा कमटे मान सोजन नानक दर गई प्रवान कोट कर्म करे तारे सरम पावे सगले वीर तारे अंग तपस्या तो करें उनका नरक से रूप फिर उतार अंग जतन कर या तन में दरवे हर दर के कैसे गए आप उसको जो भला कहावे तिसे भलाई निक न आवे सर्व की रें जा का मन होए कौ नानक दा की निमल सोए जब लोग जाने मुझते कछ होए तब उसको उस गुनाह ही कोए जब जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जन में फिरता जब तारे को बैरी में तब लग नहीं चलना आई थी जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म हृदय सजाए रब कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक छूटे सहस कटेला कुड़तावे तृप्त न आवे माया पाचे पावे अणक भोग क्या के कर न तृप्तावे खप का मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मोर तीर्थे सब का जे नाम रंग सर सुख भागी से विराव तो है करण करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाव करण करावण करने हार इसके आत्म का विचार जैसी दृष्ट के दस आया पे आप प्रभ सोए जो कुछ गिन सो अपने रंग सब ते दूर सबू के संग भूजे देखे कर विवेक का पे अनेक मरण बिंस आवन जाए नानक सदी रह समाए आबू जैसे समझे आप आपे रचे सब के साथ अब किन अपन विस्तार सब कुछ कहो करने यार उसे भिन्न कहो सोए थान तनंतर एक सोए अपने चलता करने हार कौते करे दंगे पार मन में अपने अपनी माए नानक कीमत कह न जाए सत सत सत गुरु स्वामी गुरु प्रसाद किन वख्यानी सच सच सत सब किना कौन मद किन वरले चिना भला भला भला तरूप आ सुंदर आ पार रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरण उख्याण पुअत्र पुअत्र पुअत्र पुनीत नाम जप नानक मन प्रीत सलोक संत शरण जो जन पर सो जन उदरण हार संत की निंदा नानिका बहर बहर अवतार अष्टपदी संत के दुख ने अर्जा कटे संत के दुख जम तने छुटे संत के दुख सुख जब जाए संत दुख नरक में पाए संत के दुख मातो मिली संत के दुख सो बाते हीन संत के तुग रखने को है संत के दुख अंतान पर सोए संत कृपाल कृपा जे करे नानिक संत संग निंद पीतर है संत के दुखन ते मुख पाए संतन के दुखन काग जोन लवे संतन के दुखन सर्व जन पाए संत के दुखन त्रिक जोन क्रमाए संतन के दुखन तुस नम जलै संत के दुखन सब को चलै संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच न जाए संतोखी गाता उकनाए नानक संत पावे तो भी गत पाए संत के निंदक मात ताई संत के निंदक निंदक न पाई संत के निंदक मात यारा संत के निंदक परमेश्वर मारा संत के निंदक राज ते हीन संत के निंदक दुख यार दीन संत गणिंद को सर्व रोग संत गणिंद को सदाव जोग संत गणिंदा दुख माय दुख नानक संत पावता उसका भी हो मोख संत का दुखी सदा पवे संत का दुखी किसे का नहीं मैं संत का दुखी को डान लागे संत का दुखी को सब त्यागे संत का दुखी मांकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरा संत के दुख ना सुख ते टरा संत का दुखी को ने ठाव नानक संत पावता ले मिलाए संत का दुखी अब बीते टूटे संत का दुखी कित काज न पहुंचे संत का दुख उजान प्रमाई है संत का दुखी उजड़वाई संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास मन मृत की लोथा संत का दुखी जड़ कि जनाया अपन भी जा पे खाए संत का दुखी गौण राखण हार नानक संत भावता ने उहार संत का दुखी उंबल लाए जो जल विहीन मचली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पाव किंदने त्रफे संत का दुखी छुटे केला जो बुआर तिलखी तुम्हारे दुहेला संत का दुखी धर्म थे संत का दुख साथ मिथे कैद कीर्तन का तुरी पया नानक ज्योतिष भावे सोए थे आ संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत का दुखी को दरगह मिल सजाए संत का दुखी सदा सकाई संत दुखी न मरण जाए संत का दुखी पूजन आसा संत दुखी चले निरास संत का दुख न तिष्ठे को जा सभावे तसा कोय भया कीर्तन मेटे को नानक जाने सच्चा सोए सब

चरण सासा प्रसन्न हार पूजा सासा सेव दार दर्शन सासा बेगुण हार नाम सा सत्यवन हार आप सत सत सब धारी आपे गुणे आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुरत सत सत जा सुनता पूजन हार को सत सब हो नानक सत सत प्रभु सोए सत सर्व धन मान्या करम कर्म धन माल पुष्प मूल पुछाने जाकर देव सुवास प्राप्त तत् ज्ञान समान उठाया पैते निर्भ हो बसाना जिस देव जाति समाज समाना बस समाज ले बस कड़ाए ता को भिन्न कह न जाए बुझे बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक ठाकुर का सेवका के कारी ठाकुर के सदा सुजावनी ठाकुर के सेव के मन प्रति ठाकुर के सेव के निर्मरित ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम करंग सेवक प्रभु पालन हार सेवक की राखे निरंकार सो सेवक जिसे प्रभु धारे नानक सो सेवक सास सास मारे अपने जन का पर्दा डाके अपने सेवक सरभरा अपने दास को देव डाय अपने सेवक को नाम जपाए अपने सेवक के अब धरा केदा की गल को न लाके प्रभु के सेवक को कोण बहुचे प्रभु के सेवक को उचे उचे जो अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दास जिस प्रगटाए निके केरे मकल राखे बसम करे लश्कर को लाके जिसका सास न कटते आपता को राख दे कर हाथ है मान जतन करत बपा जिसके करत बिरथे जात मारन रावे हर मारन राखे उन कोय सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जब नान कुरबल कुबिड़ानी बारंबार बार प्रभु जी पिए पिए अमृत मंथन द्रपी नाम तंजन गुरु कृपा तिसके श्रवण ने दुष्ट आया नाम धन नाम रूप रंग नाम सुगर नाम का संग नाम राजो जन तिरताने नाम मंथन नाम में नाम समान उठ बैठ सूत नाम कहो नानक दिन के सदकाम बोलो जाज जवा दिन रात प्रभु ने जन की नींद रात करे भगत आत्म के चाज प्रभु ने सो रहे समाय जो हुआ वो सो जाने प्रभु ने कहा हुकुम जाने तिसकी महिमा कौन बखान हो तिसका गुण कह न जान आठ पर्व सहजूरे कहो नानक सीजन पूरे मन मेरे तिनकी ओर ले तिन मंथन अपना तिन जान दे जिन जन अपना प्रभु जाता सुजन सर्व तो का दाता तिसके शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श पाप मिटावर से अमन सगली चारती जन की तू सेवा लागे अमन जान न होवे तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जाने सतगुरु तिसका नाम तिसका संग सिख उदर नानक हर गुण गावो स्पदे सतगुरु सिखी करे प्रताप से को गुरु सदयाल सिखी गुरु दुरमत माली रे गुरु बचनी हर नाम सरे सतगुरु सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हटे सतगुरु सिख को नाम धंदे गुरु का सुख गुण पाकी है सतगुरु सिख कल पल सवार नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारे गुर के ग्रह से युग जो रह है गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछुन जनावे हर हर नाम जो सत्याव मन बेच सतगुरु के पात सेवक के कार्य रहा सेवा कर तो इन्हें कामी तिसको प्राप्त स्वामी अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेव गुरु की मतले विश्व सेव गुरु का मन माने सो सेव परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जी श्री दे हरनावन कुबार कुल को जाओ सर्वधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार में कैब नहीं किस परम सह सैन मिले न जाई नानक ऐसा गुरु भागी भाई सफल दर्शन वेगत पुणीत परसत चरण गत निर्मरीत भेट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गे गवे सुनकर वचन करण अखाने मन संतोख आत्म पते आने पूरा के रोग रखे जाकर मंत्र दृष्ट पे कह सन गुण बेन किमित नहीं पाए नानक जिस भाव जी ले मिलाए जे पाए कुछ सतन एक सत पुरुष पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत पुराणी गुम को चर बण रवाणी तना निरहा निर सुखदाय ताकि कीमत किन न पाए भगत बंदन निष्क्रह चरण कौन फिर दे सिमरत सतबल हरि सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद सबरज अपने हर स्वावे जन को अमृत बेमर सोए प्रभु असुर का नायक देवी ना जाके मन भक्त गुणदास आठ पैर हर का नाम ले सत उपदेश को दे मोह माया के संग न ले मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रकाशे नानक परमो दुख दैते नासे तब तुम्हें ठंड वरताए निभ दुख न टेवाए जन्म मरण के मिटे जैसे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुंचो का निर्भय बसे सगल व्याध मन ते कह नसे जिसका साधन कृपा तारी साध संग जब नाम मुरारी थित पाए चुके भ्रम गावन सुन नानक हर हर जस सरवण निर्गुण आप सरगुण भी ओही कला धार जिन सगली मोही अपने जल प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाई कोई सरण निरंतर को सोए उत्पूत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध के संग

वार दुलभ देदत काल उधार निर्मल शुभ अमृता की वाणी एक नाम मनमय समाणी दुख रोग बिन से भय परम साधना निर्मलता को सब ते उजता की शोभा बणी नानक गुण नाम सुखमणी दुख रोग बिन से भय परम साधना निर्मलता के करम सब ते उजता की शोभा बणी नानक गुण नाम सुखमणी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो दे ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਸੁਖ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਸੇਵੀਐਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਤਨਾਮ

हर नाम सलाए हर नाम मन नाम रहन लिवलाए अनहद तुनी दरवज दे तर सच्चे सुभा पाई जिनी गुरमुख नाम सलाहिया तिन्ना सबको कहे साबास तिनकी संगत दे प्राप मैं जाच की अरदास नानक भाग बड़े तिन गुरमुखा जनंतर नाम प्रगास श्री राग महला पंजवा कर पहला क्या तू रत्ता देख पुत्र कलत्र सिगार रस भुगै कुसिया करै माने रंग अपार बहुत करे फरमाई से वरते हुई अपार अफार करता चितना भई मन अंध गवार मेरे मन सुखदाता हर सोए गुरु प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होए।

धंधा सब जलाए कै कुरक गुर मिलया थाऊ। धंधा सब जलाए कै गुरु नाम दिया सच सुआउ। आसा सबे लाहे के इक आस करा कमाऊ। जिनी सतगुरु सेविया तिन अगे मिलया थाऊ। मन मेरे करते नू सलाहे सबे छड सयान पा गुर की पैरी पाहि रहाऊ। दुख भुख नह व्यापे जे सुखदाता मन सो होए। कितहि काम न सिजियै जा हृदय सच्चा सोए। जिस तू रखे हथ दे तिस मार न सके कोई। सुखदाता गुर सेवे है सब अवगुण कड्डे तोए। सेवा मंगे सेव को लाइया अपनी सेव। साधु संगम सकते तुठे पावा देव। सब किशव संगत साहिबे आपे करन करेव। सतगुर कै बलहारण है मनसा सब पूरेव। इको दिसे सज्जनो इको भाई मीता। एक से दी सामग्री किसे दी है रीता। एक सिउ मन मान्या ताहो अनि चल चेता। सच खाना सच पहनना टेक नानक सच की टेक नानक सच कीता। श्री राग महला पंजवा।